0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सबसे पहले सम गुड न्यूज. एवरी डे इन द मॉर्निंग वी स्टार्ट ऑफ विद सम गुड न्यूज. इन फैक्ट गुड न्यूज व्हाट वी काइंड ऑफ फोकस ऑन थ्रू आउट द शो. बट द बिगेस्ट पीस ऑफ गुड न्यूज इज यू डोंट हैव टू बी एन F1 फैन टू एंजॉय दिस वन. कंफर्म कर दिया है दैट द अबू धाबी ग्रैंड प्री इज गोइंग एज प्लान. इट इज गोइंग टू बी द सीजन एंडिंग ग्रैंड प्री जैसा कि हर साल होता है, इस साल भी होने वाला है. कभी हाँ टाइप का शाहरुख खान की पुरानी पिक्चर लगी हुई थी F1 की जो अथॉरिटीज हैं, लेकिन नाउ दे हैव कंफर्म दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. लाइक आई सेड, यू डोंट हैव टू बी एन F1 फैन, यू कैन बी अ म्यूजिक फैन एंड एंजॉय दैट न्यूज एज वेल. Songs coming up in just a while. मेरे हस्बैंड की बीवी से फिल्म का टाइटल पूरी फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग जब हो समझ जाइए. That's an interesting song that you are thinking of this morning. What is that one song जो आपके दिन की बिल्कुल बढ़िया वाली शुरुआत करता है, मुझे बताइए. You can request just for 1 hour, about 35 minutes to go for the early morning request hour up until 8 AM. Send me a WhatsApp on 0543091062. Good morning.
1: फायर है तू,
2: वाइल्ड फायर है.
1: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज. अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है.
3: देख 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से AC स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो AC स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
4: चलो चले अलराज.
3: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns.
7: What if your insurance gave you money back? Up to 8000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
3: The Big Breakfast brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
6: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest with EMIs starting from just 966 dirhams per month.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Morning is 7:27 on the clock and let's take a look at the temperature. सबसे पहले 34 degree Celsius right now, humidity at 64%, winds blowing at just 6 kilometers per hour. It's been a sunny start to this Monday morning. Highs of 38, lows of 34 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आज के दिन पसीने में कितने डूबे, दैट इज द मेन क्वेश्चन एवरी डे इन द मॉर्निंग।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: और जैसे कि होता है, मतलब पहला कॉन्वर्सेशन हम लोग वेदर के बारे में करते हैं, व्हाट इज द वेदर गोना बी आउट देयर, वी वर टॉकिंग अबाउट द टेंपरेचर, बट इंटरेस्टिंग डे आज व्हेन इट कम्स टू द तापमान, एंड दैट इज बिकॉज आज 24th ऑफ ऑगस्ट है, एंड आज क्या होने वाला है, बीन अनाउंसिंग इट लास्ट एंटायर 10 टू 12 डेज। आज इज द डे व्हेन द सुहेल स्टार, द एब्सोल्यूट सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वेदर की स्पॉटिंग होने वाली है। अब जब सुहेल स्टार दिखता है आकाश में डॉन से पहले, तो उसका मतलब ये होता है कि द वर्स्ट फेज ऑफ समर इज नाउ बिहाइंड अस। इसका मतलब ये नहीं कि कल से 25 तारीख को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिप हो जाएगा, लेकिन नहीं, व्हाट इट मींस बेसिकली इन कॉर्पोरेट लिंगो इज के समर को अपना टर्मिनेशन लेटर मिल गया है और अब वो अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है। Can't get any clearer than that. Yeah, so 24th of August, expect better days. Sporadically, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिनों के साथ साथ अच्छे अच्छे दिन भी आएंगे. Nice, pleasant weather is just around the corner. कितना बड़ा corner है ये पता नहीं अभी तक. Yeah, this is the big breakfast with me, Sid. बताइए कौन सा वो गाना है जो आपको सुबह सवेरे आपकी batteries recharge करता है. You can request for your favorite songs. The number is 054-309-1062. Why don't you send me a WhatsApp?
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:06।
1: Bollywood.

0: आठ बजकर 9 मिनट ऑन दिस मंडे मॉर्निंग, 9 to 6 की दौड़ में हर कोई लगा हुआ है, बट वाई ओनली 9 to 6? वाई कांट द टाइमिंग्स बी समथिंग मोर क्रिएटिव?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: अरे देयर इज अ वर्कर जिसने आर्ग्यू किया है कि अगर आप 9 से 5 को कंपेयर करें 2 से 10 से, instead of working 9 to 5, if you work 2 to 10, it is much better. And people are thinking that, yaar, ye baat mein shayad ho sakta hai ki thoda dam ho. Now, here's what he says. Ke, dekho, agar aap 9 se 5 ki jagah, agar aap 2 se 10, 2 p.m. to 10 p.m. kaam kar rahe ho, right? You could sleep right after work. Kaam se laute, seedha, thakak, so gaye. All that fatigue, zombie state that you're in the evenings, ya kaam se laute, you know, you can't get anything else done. Let's face it, right? 9 to 5 आप करते हो, उसके बाद आके घर पे सोचते हो कि थोड़ा बहुत काम और निपटाऊंगा अपना खुद का पर्सनल, कभी होता नहीं है ना। टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट, काम से वापस लौटो 10 बजे, सो जाओ, दैट्स इट, सुबह उठकर फ्रेश, यू हैव अंटिल 2 p.m. टू गेट सम सीरियस वर्क इन। नाउ मोस्ट प्लेसेस आल्सो ओपन ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू गेट बैक अराउंड 10 o'clock, सो कोई अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा देयर ऑल ट्रिवियल टू मेक। कंजेशंस अवॉइड कर सकते हैं आप, राइट? जिम्स आर एम्प्टी, ट्रैफिक नहीं होता, ग्रोसरी शॉप्स आर पीसफुल, सो यू गेट सो मच मोर प्रोडक्टिव आफ्टर अ गुड नाइट्स रेस्ट, ही सेज, एंड यू कैन एक्चुअली गेट चोर्स डन एफिशिएंटली एंड हैव टाइम टू चिल बिफोर वर्क। अभी कहते हैं कि चक्कर ये है कि नहीं, आप अगर आप पूछ रहे ना कि भाई ये काम क्या करता है, कौन सा बॉस दुनिया का 2 से 10 आपको काम करने की आज्ञा देगा, दिस गाय एक्चुअली वर्क्स इन स्पेन, ही इज अ डिजिटल नोमैड, और वो US के क्लाइंट्स हैं उसके, सो US टाइम के हिसाब से काम करते हैं लेकिन फ्रॉम स्पेन, सो दैट्स हाउ ही वर्क्स 2 to 10। एंड या ही इज ऑलरेडी एंटिसिपेटेड व्हाट यू आर थिंकिंग, दैट अगर दुनिया के सारे लोग ऐसा करने लगे, 2 से 10 काम करने लगे, सो ऑल मोस्ट ऑफ द एडवांटेज दैट ही इज काइंड ऑफ लिस्टेड वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन टिल दैट टाइम ट्राई एंड कन्विंस योर बॉस, यार बॉस कैन आई कम 2 to 10। सोचिए अगर आपने अपने बॉस से ये कहा तो क्या जवाब होगा उसका। Songs coming up in just a while. Rang De Lal, and this is the hour of the show, which we are playing. Also, the big Bollywood quiz. This is the Big Breakfast with me, Sid. Big.

0: 8 years after it came out on OTT. I think one of those shows that created the OTT landscape, Mirzapur. But this time it's going to be out at a cinema hall near you. Mirzapur, the movie releasing on the 4th.
1: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Song called Varu Forever. I don't know if it's inspired from ye jo Welcome to the Jungle ka gana tha. Ab to forever. ऊंचा लंबा कद फॉरएवर से इंस्पायर्ड है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, लेकिन आजकल काफी सारे ये सब टैगलाइंस लग रहे हैं गाने के साथ भी, नॉट जस्ट फिल्म. मिर्जापुर की टैगलाइन ऑफ कोर्स द मूवी, बिकॉज इट इज नॉट द शो. द शो वाज ऑफ कोर्स वेरी वेरी पॉपुलर, एंड धीरे धीरे फर्स्ट लुक्स इसके बाहर आ रहे हैं. फर्स्ट लुक पोस्टर्स रवि किशन के, सोनल चौहान इज इन दिस वन, एंड सुशांत सिंह इज ऑल्सो इन दिस वन. एंड भाई क्या स्टार कास्ट है. ऑफकोर्स देयर इज पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्यंती, उनके बिना तो मिर्जापुर ही नहीं है. एंड साथ में देयर आर दीज न्यूअर कैरेक्टर्स एंड सो मेनी ऑफ देम, विच मेक्स मी थिंक कि मतलब दे आर सेटिंग द एंटायर लैंडस्केप अप फॉर पार्ट 2, 3, 4. ये अलग ही एक थ्रेड यहाँ से शुरू करेंगे. सो इट्स गोना बी आउट लाइक आई सेड ऑन द 4th of September, Mirzapur the movie. Filhal Awarapan 2 is still doing some brisk business. Tera Mera Rishta, iska tagline hai, continues. Tera Mera Rishta continues right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Ladies and gentlemen, this is the moment that everybody has been waiting for.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: बहुत सारे तुक्के बहुत सारे लोगों ने लगाए एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस पीपल हु मैसेज्ड अस व्हाट्सएप अस 0543091062 पर के बिग चेकिन का लेटेस्ट सीजन तो आ रहा है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बिग चेकिन कहीं तो जा रहे हैं अमेजिंग धासु डेस्टिनेशन वो कौन सी है कहां पर आपको कहना है गुटन टाक कहां से आपको मिलते हैं ऑटो बांस एंड सम अमेजिंग लग्जरी कार्स इफ यू थिंक ऑफ इंजीनियरिंग यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स वी आर हेडिंग आउट टू बताइए इट इज नॉट स्पेन इट इज नॉट द यूके दीज आर ऑल द रॉन्ग आंसर्स दैट वी बीन गेटिंग वी आर गोइंग टू जर्मनी जर्मनी जा रहे हैं हम लोग दिस सीजन ऑफ बिग हेड आउट टू जर्मनी अच्छा अब ये बताइए कि आपको करना क्या है आपको जाना है इस ट्रिप पर यू गॉट गेट योर नेम ऑन टू द गेस्ट लिस्ट इसके लिए क्या करना है एवरी वीक देयर इज गोना बी एन अमेजिंग न्यू कॉन्टेस्ट दैट वी गोना बी प्लेइंग दिस वीक इज गोना बी गुटन टाग दिलवाले व्हिच इज अ कॉन्टेस्ट में कि बॉलीवुड रोमांस मीट्स जर्मन लैंडस्केप्स राइट तो बताता हूं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आपको क्या करना है लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है जस्ट टेक्स्ट बिग चेक इन बिग स्पेस चेक इन स्पेस योर नेम बिग चेक इन स्पेस अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए 0543091062 दिस इज नॉट अ टेक्स्ट इन और एन SMS कॉन्टेस्ट इट्स अ व्हाट्सएप कॉन्टेस्ट सो 0543091062 दैट इज द व्हाट्सएप नंबर क्या लिखना है आपको बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम बिग स्पेस चेक इन स्पेस योर नेम व्हाट्सएप इट टू 0543091062 एंड देन ऑल द डिटेल्स कमिंग राइट अप
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Exclusively on Big 106.2.
0: And don't worry, I'm going to give you about a half an hour, 45 minutes to get your entries in, right? So, Big Check-in, space your name, send it to 0543091062. Big Check-in to Germany.
2: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए। पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। From high speed chases down the autobahn to dramatic Dawn 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties, coming soon on Big 106.2.
2: School's starting soon and we need a car.
3: Books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school offer on self-drive. Self-drive cars from just 1,099 dirhams per month, flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with self-drive from 1,099 dirhams per month, flat rate. Self-drive, get ready, get driving.
5: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
5: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: 24th of August is traditionally very, very important day when it comes to the weather, because आज सुहेल स्टार स्पॉट करने का दिन है। It's officially the last day of peak summer. इसके बाद weather-wise अच्छे दिन आने वाले हैं। That's what you can expect. 38 degrees Celsius right now. Humidity at 42%. Highs of 39. Lows of 34 degrees Celsius.
5: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 1 + 1 = 3!
1: That's not right.
0: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
1: Really? And these 4 designs to choose from?
0: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
1: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
2: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate, with zero penalty on early returns.
2: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2.
4: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
5: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams, इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
2: The Big Mix, miss kiya gaya?
6: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
7: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो, कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
8: 11.
7: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम। आई एम गोना गिव यू 2 चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन कौन सी डिश चूज करोगे, ठीक है?
8: डन।
7: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
8: समोसा।
7: ओके, समोसा या डोसा?
8: समोसा।
7: समोसा या राजमा चावल?
8: आई थिंक राजमा चावल।
7: ओके, राजमा

0: करोगे, ठीक है? ओके, समोसा या वड़ा पाव?
1: समोसा.
0: ओके, समोसा या डोसा?
1: समोसा.
0: समोसा या राजमा चावल?
1: आई थिंक राजमा चावल.
0: ओके, राजमा चावल या पास्ता?
1: राजमा चावल.
0: राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
1: आई थिंक भल्ला पापड़ी चाट.
0: ओह, देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए. I see there are a lot of people who are samosa fan. I am one of them. I will not rate you as a foodie. It's okay. You are actually 11 on 10. Thank you. Bye. If you think you are a bigger foodie than Pranav, all you have to do is call karo mujhe 800-1062 par and we'll see if you are a bigger foodie.
2: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Morning is 9:30. ठीक 9:30 on this Monday की सुबह. Monday morning doing Monday morning things. कहाँ पर unusual traffic आपको मिलेगा? There's still a bit of congestion heading east. उल्टी दिशा में on E44 Alkhel Road पर. This is right at Russell Court Wildlife Sanctuary and then going towards Business Bay from D3. तो आपको रोज की तरह traffic मिलेगा. Slow moving. हल्का फुल्का ट्रैफिक एट D71 ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल एंड यूल फाइंड कंजेशन आज 14 मिनट का, 14 मिनट स्लो डाउन एट ट्रेड सेंटर अराउंड अबाउट E11 पर एज यू हेड साउथ ऑन शेख जायद रोड. अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स इज रिपोर्टेड आउट देयर, सो बी केयरफुल. इन केस ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एनीथिंग एल्स, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
2: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
4: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
5: Goli nahi marenge saale ko. Keh ke lenge uski.
2: Big.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2 पर इट्स नाउ टाइम फॉर द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: I love it when फिल्मों की एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. आज एक फिल्म की एनिवर्सरी है. इस फिल्म के बारे में कुछ क्लूज मैं आपको देता हूँ. यू बी फिगरिंग आउट कि कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ. विच फिल्म सेलिब्रेट्स इट्स एनिवर्सरी टुडे द 24th ऑफ ऑगस्ट. एंड कितने साल हो गए. इट्स बीन 19 years. पहले आज ही के दिन एक फिल्म रिलीज हुई. कौन सी वो फिल्म है आपको मुझे बताना है. क्लूज आपके लिए कुछ इस तरह. दिस इज द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एवर रिलीज्ड ऑन अ हाई डेफिनेशन ब्लू रे पे रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म थी. आई डिडंट नो दैट. सो या दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट. ना यू गेट टू सर्च फॉर ट्रिविया अबाउट अ पर्टिकुलर फिल्म एंड देन यू गेट टू नो सो मच अबाउट इट. नाउ ये पहली बार ऐसा हुआ कि शाहरुख खान made a guest appearance in an Akshay Kumar movie. Akshay Kumar has made a guest appearance in a Shah Rukh movie, but he decided to pay back the compliment in this song. मस्त कलंदर नाम का गाना कौन सी फिल्म का है आपको मुझे बताना है. इसमें शाहरुख खान का एक कैमियो है. द फिल्म स्टार्स अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, देयर्स विद्या बालन. इट इज हेविली इंस्पायर्ड बाय एन अमेरिकन मूवी थ्री मैन एंड अ बेबी. एंड इट्स अ डायरेक्ट रीमेक ऑफ अ 1990 मलयालम मूवी कॉल थूवल स्पर्शम. थूवल स्पर्शम. आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग राइट. आई एम प्रीटी श्योर आई गॉट इट रॉन्ग. सो कौन सी फिल्म है. फिल्म का नाम अगर आपने पता कर लिया, इफ यू फिगर इट आउट, देन गिव मी अ कॉल 800-1062. दैट्स द नंबर टू कॉल 800-1062 पर अगर आप जीतना चाहते हैं दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: मॉर्निंग 10:15 ऑन दिस 24th ऑफ अगस्त, सपोज टू बी द लास्ट डे ऑफ पीक समर। देखते हैं आगे अच्छे दिन आएंगे कि नहीं। वेदर वाइज 39 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 42%, विंड्स एट जस्ट 6 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 39 राइट नाउ, लोज ऑफ 34 डिग्रीज।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.in.

0: झुमका?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Show brought to you by Jetour. You can drive home your dream SUV this summer with Jetour's unbeatable offers. VAT on us or 0% interest, free service package included, 1 million kilometers ki warranty, EMI starting from just 966 dirhams per month. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding, T's and C's do apply. Last chance for you to get your entries in. Give me a call 800-1062 par. Do open movie tickets agar aap jeetna chahte hain in the big Bollywood quiz. Batao ye गाना कौन सी फिल्म का है? अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, विद्या बालन. एंड इस गाने में वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज शाहरुख खान मेड हिज गेस्ट अपियरेंस इन दिस सॉन्ग. ये कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम अगर आप जानते हैं, इट्स दिस फिल्म्स बर्थडे टुडे. 800-1062 कैन पे कॉल कीजिए एंड यू कुड विन टू ओपन मूवी टिकट्स.

0: Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big cash and big ticket.
2: 15 million dirham grand prize.
1: Win up to 1 million dirhams with Big Spin.
2: Plus 5 consolation prizes.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo. Khush hua.
6: Hi, Zameer. Good evening.
7: Hi, ma'am. How are you?
6: I am good. How are you?
7: Good evening. Very good evening. Just missing my wife.
6: Missing your wife?
7: Yes.
6: Kahan gayi
7: ho? Too much.
6: अरे अरे अरे मोहब्बत हो तो ऐसी ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
7: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
6: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
7: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
6: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आश की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
7: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
6: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
7: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
6: अच्छा, आपने
7: लॉन्ग
6: डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड। बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
7: यस, आई एम ट्राइंग टू।
6: हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
7: करता ही रहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं करता।
6: वो उठाती ही नहीं उठाती
7: नहीं। वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
6: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
7: जाएगी। साथ यही हो रहा है।
6: नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो। जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, जल्दी उठा, तेरा खटा ना, चल हटा।
9: हाँ,
8: अरे जल्दी उठा, यार सुन ना।
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: It is 10:27 on the clock and let's take a look at सबसे पहले द कैपिटल अबू धाबी। यहाँ पर आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा मुसफा इंडस्ट्रियल के आसपास। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज एब्सोल्युटली स्मूथ गोइंग। थोड़ा बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है एज इज एक्सपेक्टेड गोइंग टुवर्ड्स बनियास एट मफरक इंडस्ट्रियल एंड दिस इज E11 हेडिंग नॉर्थ। चलते हैं दुबई शारजा की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कहाँ की, अलकूज इंडस्ट्रियल थर्ड पर फर्स्ट अलखेल स्ट्रीट पे आपको एक इंसिडेंट मिलेगा एंड दिस इज हेडिंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स अलकूज इंडस्ट्रियल फर्स्ट, सो बी केयरफुल आउट देयर। देन देयर इज E44 going towards Business Bay from D3 and then 71 you'll find traffic going towards Dubai Mall as well on Financial Center Street. Aap subah se kafi traffic is sadak pe aapko milega. Then there is 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries you'll find 5 to 6 minutes ka delay.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: है मुझसे काम पे चोरी छुपे, लेकिन फिर देन आई रियलाइज शी इज अ बिट शाय. कीर्ति विद मी ऑन द फोन लाइन. गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग.
0: कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया, आप कैसे?
0: आपको इतना डर क्यों लग रहा है?
1: अचानक
0: ही लगता है ना भाई. कैसे मतलब मैं आपको बोलूंगा तो नहीं नहीं कीर्ति अब मैं उठा रहा हूँ फोन. इन 3, 2, 1 गो. ऐसे थोड़ी होता है यार.
1: नहीं मैंने ऐसे घर पे सुन रही थी एफएम चला के, फिर फोन मैंने कहा चलो कर देती हूँ.
0: अच्छा काम करते हो आप, एफएम चलाते हो. और कौन से अच्छे अच्छे काम करते हो बताओ मुझे कीर्ति, थोड़ा मैं आपका आइस ब्रेक कर देता हूँ. बट कीर्ति यू बीन हियर फॉर 9 to 10 months आपने कहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुबई की हवा लग गई आपको कि नहीं लगी अभी तक. क्या क्या लग रहा है?
1: नहीं अब तो लग गई, स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा था, अब तो बढ़िया
0: है ना. अब तो मन ही नहीं कर रहा मन लगने का, अब तो मन ही नहीं कर रहा घर वापस जाने का है.
1: नहीं नहीं जाऊंगी मैं नेक्स्ट मंथ
0: ही जा रहे हो
1: मतलब.
0: सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल गो बैक आने के बाद? हां. वाओ भाई, मतलब ये जो सूटकेस होता है ना पहली बार जब आप जा रहे होते हो जिस पे इतनी सारी निगाहें टिकी हुई होती है, क्या क्या पैक किया अभी तक?
1: अभी तो ज्यादा कुछ नहीं, चॉकलेट्स लाऊंगी और डेट्स और थोड़े बहुत कुछ चीजें मेरे और परफ्यूम्स
0: कुनाफा. चॉकलेट नहीं आजकल दुबई चॉकलेट चाहिए होता है, परफ्यूम्स. करेक्ट. सो आपने बताया आप अलवर से हैं, अलवर राजस्थान. हाँ मेरा पूरा ससुराल इज फ्रॉम कोटा राजस्थान, सो वी गॉट दैट कनेक्शन गोइंग. मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया कि व्हाट इज अलवर फेमस फॉर, तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कि आपका और गूगल का आंसर मैच होता है कि नहीं. बताओ व्हाट इज अलवर फेमस फॉर?
1: वो मिल्क केक होती है ना कलाकंद, उसके लिए फेमस है और कचौरी.
0: टॉप आंसर दे दिया आपने, कलाकंद. मैंने कभी खाया ही नहीं अलवर का खोया, अलवर का खोया या फिर कलाकंद. हाँ
1: मैं लेके आऊंगी, अब जाऊंगी ना.
0: मैं वही कहने वाला था, दैट्स वेयर आई वाज हेडिंग विद दिस कन्वर्सेशन. घर जा रहे हो तो प्लीज मेरे लिए अलवर का खोया लेके आना है, देखूं तो सही क्या है अलवर के कलाकंद में. हाँ
1: लेकिन वो बहुत टेस्टी है यहाँ दुबई में, बहुत फेमस दुबई में क्या सब जगह फेमस है.
0: यहाँ मिलता है अलवर का खोया?
1: नहीं अलवर वाला नहीं मिलता, जैसे कोई इंडिया से आता है.
0: मिल्क केक तो ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट रॉन्ग. बट देखना मुझे कि आप लोग इतनी तारीफ क्यों करते हो अलवर के कलाकंद की. बट लास्ट टाइम एक फिल्म जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा था बैक इन 2007, उसका मैंने आपको एक गाना सुनाया था और पूछा फिल्म का नाम क्या है. द गाना वॉज दिस वन. विच फिल्म सेलिब्रेट इट्स 19th एनिवर्सरी टुडे 24th ऑगस्ट? सही जवाब क्या है?
1: हे बेबी.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, कांग्रेचुलेशंस. आपने जीते 2 ओपन मूवी टिकट्स. कोई है साथ में जाने के लिए या नहीं?
1: नहीं मेरे हस्बैंड है ना, वो ऑफिस गए.
0: अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया है. चलो मजा आ गया आपसे बात करके कीर्ति. होपफुली नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो इतनी आप शर्माई हुई सी नहीं होंगी.
1: नहीं नहीं और मैं आपके लिए पक्का मिल्क केक लेके आऊंगी. मैं कॉल वापस आऊंगी ना इंडिया से, फिर आपको मैसेज कर.
0: बोलता हर कोई है, लाता कोई
1: नहीं. नहीं नहीं पक्का लेके आऊंगी.
0: यही है ट्रेजेडी मेरे लाइफ की कीर्ति जी, क्या बताऊं मैं.
1: नहीं नहीं होगी.
0: अब आप जाओगे मुझे भूल जाओगे. मैं पक्का कह रहा हूँ भूल जाओगे. लगी शर्त? लगी शर्त
1: ना, नहीं शर्त है पक्का.
0: चलो डन है, देखता हूँ. आप वापस कब आ रहे हो?
1: मैं 6 दिसंबर को.
0: ठीक है मैं देखता हूँ, मैं 7 तारीख को आपको कॉल करूंगा. ठीक है
1: ठीक है.

0: थैंक यू कीर्ति, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट एंड कांग्रेचुलेशंस. ये कीर्ति हमारी आज की विनर है. रोज सुबह हम खेलते हैं द बिग बॉलीवुड क्विज राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: स्पिनर टू पोस्ट दौड़ते रहोगे कब तक या थोड़ा अनवाइंड थोड़ा चिल भी करना बहुत जरूरी है यार. इफ यू नीड इवनिंग टू स्लो डाउन अनवाइंड दिस इज फॉर यू. 29th of August जिक्र ब्रिंग्स इंडिया सेलिब्रेटेड स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल टू दुबई. पहली बार आ रहे हैं विद शो धक धक. एक्सपेक्ट पोएट्री सोल स्टरिंग स्टोरीज एंड वार्म चाय एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल. डोर्स ओपन एट 4:30 PM एंड शो शुरू होगा शाम 5:30 PM. टिकट स्टार्ट एट 199 dirhams अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई टी and free parking. To win tickets, keep listening to Big 106.2.
1: Big 106.2.

0: Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: It is 10:43 on the clock and let's take a look at the usual suspects. 311-11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Roz ki tarah aapko 5 se 6 minute extra bitane honge. There's some roadworks going on at Al-Nahda Interchange 1 which will kind of add to the delay a bit. Then there's a congestion at Beirut Street, D62 right outside Medina Mall, Damascus Street, Baghdad Street is also quite busy. Aaj going towards Sukal Jabel, also you'll find a bit of traffic Al-Noor Mosque se nikal ke. And this is Bushagara wala jo area, yahan par aapko traffic milne wala hai. The good news is 611 par koi congestion nahi hai. And D62 Beirut Street par at the junction of Festival City, also you'll find a bit of congestion. And speaking of which, Ribat Street par going towards Festival City bhi aapko milegi 4 se 5 minute ki der.
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, 10:48 on the clock and time for me to say goodbye to you. लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दूं दैट हमारा इंस्टा हैंडल डोंट फॉरगेट 106.2 बिग एफएम दैट्स आवर इंस्टा हैंडल एंड यू कैन फॉलो अस फॉर ऑल द बिहाइंड द सीन्स मस्ती एंड सम अमेजिंग थिंग्स दैट यू कैन टेक पार्ट इन एंड आई एम टेलिंग यू द बिग चेक इन टू जर्मनी शुरू हो गया हो सकता है आई एम नॉट कमिटिंग हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ मौके आपको मिले थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा कुछ कुछ जीतने का इफ यू नो व्हाट आई मीन I am not saying anything. But yeah, I'm going to see you tomorrow morning sharp at 7 o'clock. In the meanwhile, don't forget to follow me. I'm Sid Seth, S-I-D-S-E-T-H on Instagram. Milunga aapse kal subah sharp at 7. This is the show that gets you up and running on a weekday morning from Monday to Friday. Till then, enjoy the rest of your Monday. Bye-bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
1: एसी से रूम कूल होता है, डाबर पुदीन हरा से टमी फील्स कूल। वन टाइनी पर्ल विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स हेल्प सूथ इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट नेचुरली।
0: डाबर पुदीन हरा, स्टे इनडाइजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
2: Big 106.2. That's my song.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो, कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
3: 11.
2: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम। आई एम गोना गिव यू टू चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन कौन सी डिश चूज करोगे। ठीक है?
3: डन।
2: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
3: समोसा।
2: ओके, समोसा या डोसा?
3: समोसा।
2: समोसा या राजमा चावल?
3: आई थिंक राजमा चावल।
2: ओके, राजमा चावल या पास्ता?
3: राजमा चावल।
2: राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
3: आई थिंक भल्ला पापड़ी चाट।
2: देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए। आई सी देयर अ लॉट ऑफ पीपल जो समोसा फैन है, आई एम वन ऑफ देम। आई विल नॉट रेट यू एज अ फूडी, इट्स ओके, यू आर एक्चुअली 11 ऑन 10। थैंक यू, बाय। इफ यू थिंक यू आर अ बिगर फूडी देन प्रणव, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड वी विल सी इफ यू आर अ बिगर फूडी।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams, इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 39 डिग्री सेल्सियस आउट देयर, लेकिन ओवर नाइट जो है ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ने वाली है। इन फैक्ट दिस चांसेस ऑफ क्लाउड्स एंड रेन्स मेनली टुवर्ड्स द ईस्टर्न एरिया विच इज फुजेरा। दुबई में इट्स गोइंग टू बी सनी सनी सनी, 39 चाहे है लेकिन इट फील्स लाइक 50। टेक केयर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बता रही हूँ यार, हर किसी की लव लाइफ जैसी मर्जी चल रही हो, लेकिन जब आप ये सुनते हो ना यार,
3: देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ
2: मैं पिघल जाती हूँ यार, डेफिनेटली पिघल जाती हूँ. एंड इफ यू ऑल्सो लव ग्रेट सिनेमा एंड आइकॉनिक लिरिक्स लाइक दीज, सॉन्ग रिटन बाय जावेद अख्तर, द लेजेंडरी जावेद अख्तर, ऑल यू आर डू इज क्लियर योर कैलेंडर फॉर 28th ऑफ ऑगस्ट. गगन मुदगल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू, द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर, एंड इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल नाइट. ऑल यू आर डू इज बुक योर टिकट्स राइट नाउ डिस्ट्रिक्ट पर. शो शुरू होगा 8:15 PM और पहले ले लेना यार, पता लगे टिकट्स निकल गई हैं. लेकिन अगर आपको जीतनी है टिकट्स, ऑल यू वांट टू डू इज जस्ट कीप इट लॉग्ड टू बिग 106.2.
4: जब चाहे तब

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आई एम अ हसलर A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudinhara. Listen to her every day.
2: Mugembo! Khushua!
3: Hi, Zameer. Good evening.
4: Hi, ma'am. How are you?
3: I am good. How are you?
4: Good evening. Very good evening. Just missing my wife.
3: Missing your wife?
4: Yes.
3: कहाँ गई
4: हो?
3: अरे अरे अरे, मोहब्बत हो तो ऐसी। ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
4: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
3: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
4: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
3: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आशिक की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
4: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
3: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
4: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
3: अच्छा, आपने लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड। बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
4: यस, आई एम ट्राइंग टू।
3: हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
4: मैं करता ही रहता हूँ।
3: वो
4: नहीं, अगर तो नहीं करता।
3: वो उठाती ही नहीं उठाती
4: नहीं, वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है। क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
3: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
4: जाएगी। साथ यही हो रहा है।
3: नहीं नहीं नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो। जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: If you're heading out, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना। अगर ऑलरेडी बाहर हो तो पेशेंस रखना। E11 एंड E311 corridors between Dubai and Sharjah, of course, congested है। With that, Al Nahda, Al Tawun, Sahara Center and Sharjah industrial areas पर भी आपको कंडीशन मिलेगा। Till then, keep listening to Big 106.2.
1: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
6: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
7: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106 point पे मैं हूँ अपनी आपके साथ and you can win tickets for जादू. Okay. All you gotta do is मुझे पता है कि जैसी मर्जी लव लाइफ चल रही हो लेकिन ये वाले गाने तो हम कभी भी मिस आउट नहीं करते हैं.
2: जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ.
1: टिकट्स भी मेरे पास ही हैं, यही है लेकिन आपको जीतनी कैसे है. ऑल यू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड लेट मी नो ये गाना जो है लिखा तो जावेद अख्तर ने है लेकिन ये गाना कौन सी फिल्म का है. ऑल यू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड अगर आप ही टिकट जीतते हो यू गॉट टू बुक योर कैलेंडर फॉर 28th of August. गगन मुद्गल इज कमिंग टू द जंक्शन दुबई विद जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर. वैसे तो टिकट्स डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल हैं लेकिन जीतने के लिए ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड बताओ मुझे ये गाना जो है कौन सी फिल्म में आया था. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: 101.2 The beat of Bollywood.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चलेंगे। वक्त जो है ना सबका आता है, कभी ना कभी आता है, लेकिन इमरान हाशमी का दौर आता है और फिर से एक और बार आ चुका है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 में हूँ अवनि आपके साथ एंड कंग्रेचुलेशन सुशांत, आप जीते हैं जादू की टिकट। इमरान हाशमी कमिंग बैक टू दैट। अवारापन 2 जो है वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, लेकिन उसके साथ साथ एक और फिल्म की अनाउंसमेंट जो है हो चुकी है। टीजर जो है कल रिलीज होने वाला है, नाम है फिल्म का गन मास्टर G9। और सिर्फ इमरान हाशमी नहीं होंगे उसमें, जिनीलिया देशमुख है, अपार शक्ति खुराना भी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, चाहे टीजर कल रिलीज हो रहा है, लेकिन द फिल्म रिलीज इज ऑन माई बर्थडे, इट्स गोइंग टू बी 27th of November। गन मास्टर G9, और क्योंकि अवारापन 2 के मूवी के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है, इतने सुंदर गाने हैं, म्यूजिक एल्बम टॉप नॉच है, गन मास्टर G9 के लिए भी एक्सपेक्टेशंस उसी लेवल पर जा चुकी हैं। विल रिव्यू द टीजर टुमारो टुगेदर, टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: बच्चों भी सॉरी तान्या, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, that's more my thing.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2, brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड दिस आवर हम देने वाले हैं बिग चेक इन जर्मनी जाने का आपको मौका। ऑल यू डू इज अपने फोन पे लग जाओ, बिकॉज आपको मैसेज करना है कहाँ पर, 0543091062 पर क्या मैसेज करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन एक बार यार हम वो सक्सेस पार्टी हो जाए एकदम कि हम जा रहे हैं, द वाइब चेक हो जाए। टाइम आ चुका है नाचने का एंड अपने सूटकेस पैक करने का, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिग चेक इन जर्मनी। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: का।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: 2:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Autobahn, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: It's 37 degrees out there, लेकिन feels like 50 because humidity जो है वो 69% पे चल रही है. Take care.
5: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
7: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
5: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 mein hu Avni and mere saath hain Pooja. Hi Pooja.
2: Hi Avni. Good afternoon.
1: Good afternoon. Kaise hain aap?
2: I'm good. मैंने आपको सुना था और मुझे आपसे बात करनी थी.
1: So sweet, Pooja.
3: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Exclusively on Big 106.2.
1: ओके पूजा, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगी, आपको वो डायलॉग कंप्लीट करना है. फुल ऑन जर्मनी वाइब है, तो लेट्स सी वो आप डायलॉग कंप्लीट कर पाते हो या नहीं. ओके
2: ओके ओके.
4: आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में,
1: व्हाट इज इट,
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
1: वाओ, ये वेल, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर दिस बिग चेक इन. यू गेट अ कॉल अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो. थैंक यू सो मच पूजा फॉर पार्टिसिपेटिंग.
2: थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे.
1: इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिग चेक इन, आपको सिर्फ करना है लिखना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 व्हाट्सएप नंबर.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इंसान यार बेख्याली हो जाता है, लेकिन टू गेट बैक टू योर ट्रू सेल्फ यू गॉट टू वॉच दीज हार्टफेल्ट फिल्म्स।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: द बिग 106.2 में हूं अवनी आपके साथ। एंड रिसेंटली आई वॉच नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म थी जिसका नाम था डोंट से गुड लक। वेल, एक तो यार इसमें नो है, डोंट है, वो भी टाइटल ऑफ द फिल्म में, लेकिन फिर भी एक हार्ट फेल्ट पॉजिटिव फिल्म कैसे हो सकती है। मैंने भी यही सोचा था। ऑफ कोर्स आई जज द बुक बाय इट्स कवर, बट व्हाट अ क्यूट फिल्म यार। अगर आपने द इंटर्न या फिर द हाफ ऑफ इट जैसी फिल्म्स देखी हैं एंड यू लव देम, डोंट से गुड लक हैज़ टू बी योर फिल्म। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ यार, मैं इतना ध्यान से ना देख भी नहीं रही थी। इट वॉज वेरी वेरी वेरी सिंपल स्टोरी, जहाँ पर एक टीनेज लड़की नया नया कॉलेज में जाती है, अपना थिएटर ग्रुप बनता है, लेकिन उसके फैमिली में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, स्पेशली विद हर मदर, उनकी हेल्थ। क्यूट फिल्म यार, अगर मुझे देखकर इतनी अच्छी लगी, मुझे द इंटर्न की याद आ गई, तो यार आपको तो ये देखनी बनती है। इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, 1.5 आवर का मूवी है। एंड अगर आपने देख लिया या देखने वाले हो, देख के मुझे ज़रूर मैसेज करना कि हाउ डिड यू फाइंड इट। 0543091062 इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर। टिल देन, कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिंस एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 dirhams इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ कॉफी विद करण सीजन 9 आने वाला है एंड इट्स अ शो जो ना मैं बचपन से देखते हुए बड़ी हुई हूँ. यू एंड मी वुड बोथ अग्री कि दिस इज बिन अ गिल्टी प्लेजर. सीजन 9 तक आ गए यार लेकिन फिर भी हम करण जौहर का वो रैपिड फायर राउंड नहीं भूल सकते. लेकिन हैविंग सेड दैट सीजन 9 का पहला बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट होने वाले हैं none other than Salman Khan.
2: How does it work with handling exes when you bump into an ex-girlfriend?
3: You want them to be happy, you want them to be well settled, you want them to be part of their new families, you want
2: you,
3: them
2: you
3: to
2: genuinely
3: be
2: bless them.
3: I 100%.
1: I'm telling you, Salman Khan back then, few years back, on Coffee with Karan show, and Salman Khan today, season 9 में जो आने वाले हैं. Such a goofy personality he is. I absolutely love him, adore him. लेकिन मैं बताने वाली हूँ, it's gonna be done, bro. कौन लुटेगा, कौन नहीं? I don't know, लेकिन I am still hooked to Coffee with Karan season 9. Let's see कब आता है. Till then, you keep listening to Big 106.2.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Experience an unforgettable evening as Gagan with Gull brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
2: Listen to her every day.
3: Mugambo! Khush hua!
4: Hi, Zameer. Good evening.
5: Hi, ma'am. How are you?
4: I am good. How are you?
5: Good evening. Very good evening. Just missing my wife.
4: Missing your wife?
5: Yes.
4: Kahan gayi
5: ho? Too much.
4: अरे अरे अरे मोहब्बत हो तो ऐसी ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
5: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
4: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
5: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
4: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आशिक की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
5: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
4: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
5: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
4: अच्छा, आपने लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड। बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
5: यस, आई एम ट्राइंग टू।
4: हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
5: मैं करता ही रहता हूँ। नहीं, अगर तो नहीं करता
4: वो उठाती ही नहीं उठाती
5: नहीं। वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
4: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
5: जाएगी। साथ यही हो रहा है।
4: नहीं नहीं नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो। जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ।
6: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
8: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
6: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर लेकिन फील्स लाइक 50 क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है 68% पे चल रही है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीना बिल्कुल मत भूलना।
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द पीक लंच टाइम गोइंग ऑन. इसीलिए आपको और भूख लगवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ. वी आर गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो. करना क्या है

0: on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ and this is the peak lunch time going on. इसीलिए आपको और भूख लगवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ. We are gonna play खाओ पियो ऐश करो. करना क्या है आपको? Call करना है मुझे 800-1062 पर and if you think you are a bigger foodie than me, अगर आप एक खाने पर एक डिश पर टिक सकते हो या नहीं टिक सकते हो, we are gonna find out with this game खाओ पियो ऐश करो. Call करो मुझे this toll free number पर 800-1062. लाडो पूछा है मन्ने क्यों तेरा रंग काला तेरा एक लंच आ टाइम की ना यही दिक्कत है. गाना लाडू है, मुझे लड्डू दिख रहा है, लड्डू पढ़ा जा रहा है. 800-1062 is the number, do call me here and let's see, let's find out if you're a bigger foodie than me or not. Till then keep listening to Big 106.2.

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क जरूरी छोड़ दूँ क्या।

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी एंड मेरे साथ है गोविंद. हाय गोविंद.
2: हाय, गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून. आपने लंच कर लिया?
2: यस, अभी लंच 30 मिनट पहले हुआ है और आपने एक टॉपिक भेज दिया तो मतलब बैलेंस हो गया लगता है.
1: ओके, क्या खाया लंच में?
2: आज मैंने पकौड़ा करी और राइस खाया.
1: पकौड़ा करी
2: के बाद खाइए.
1: दैट इज लाइक पीक पंजाबी फूड फॉर मी.
2: यस यस यस, जो हम छाछ से बनाते हैं और उसमें पकौड़े डालते हैं.
1: यस, चलो शुरू करते हैं गोविंद के. देखते हैं कि आप कितने बड़े फूडी हैं. ठीक है, मैं आपको दो डिशेस दूंगी, आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी है. ओके, सो व्हाट वुड यू चूज, पकौड़ा कढ़ी चावल या फिर राजमा चावल?
2: पकौड़ा कढ़ी.
1: ओके, पकौड़ा कढ़ी चावल या छोले भटूरे?
2: पकौड़ा कढ़ी.
1: पकौड़ा कढ़ी चावल या फिर आलू मेथी की सब्जी?
2: आलू मेथी की सब्जी.
1: ओके, आलू मेथी की सब्जी या आलू गोभी की सब्जी?
2: आलू मेथी.
1: ओके, आलू मेथी या फिर पाव भाजी?
2: आलू मेथी.
1: ओके, आलू मेथी की सब्जी या आलू मेथी का पराठा?
2: आलू मेथी की सब्जी. यानी
1: आलू मेथी की सब्जी या आलू का पराठा?
2: आलू मेथी की सब्जी. यानी
1: आलू मेथी की सब्जी या पकौड़ा कढ़ी चावल?
2: उसपे भी आलू मेथी की सब्जी.
1: ओ माय गॉड, आलू मेथी फॉर द विन. लेकिन आपने लास्ट कब खाई थी? सीजन है, चल रहा है.
2: एक्चुअली देखो, इंडिया में तो हम सीजनेबल खाते हैं, उससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई और जो यादें जुड़ी हुई है मैं बता सकता हूँ. इंडिया में विंटर में आती है, जब दिवाली के टाइम पे इवन दिवाली होमवर्क करते थे तभी भी वो वाली जो मेथी आलू की सब्जी चावल खाया है ना, कभी नहीं भूल सकता हूँ.
1: हम ना उसमें वो भी ऐड करते हैं, क्या कह रहे थे उसको यार, समथिंग कॉल्ड बड़ी. बड़ी ऐड करते हैं.
2: Yeah, soya badi and matar you can add.
1: Yeah, wow, yaar, aapne to mujhe ek tip de diya. Thank you so much, Govind.
2: Thank you. Good day, bye.
1: If you think you're a better foodie than Govind, all you have to do is just give me a call, 800-1062, ya fir aap mujhe WhatsApp message bhi kar sakte hain, 054-309-1062. Number

0: To the beat of Bollywood. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।
1: Experience an unforgettable evening as Gagan Vidgal brings you Jadoo, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 PM at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
2: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 39 डिग्री सेल्सियस आउट देयर, लेकिन इट फील्स लाइक 50। एक तो इस गर्मी के कारण जो गुस्सा आता है उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: मैं मंडे को लेट आई हूँ, लेकिन क्या मैं मानूंगी अपनी गलती कि मैं एक रात पहले लेट सोई थी? हाँ, हरगिज नहीं आएगा।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ, एंड आपकी और मेरे स्लीप साइकिल की बात करनी पड़ेगी यार, अब करनी ही पड़ेगी। बच्चों की बात आ चुकी है, 31 अगस्त से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, एंड कहा जा रहा है कि उनको पहले से यार एक हफ्ते पहले से ही स्लीप साइकिल ठीक करवा लो, वरना सुबह जब जल्दी उठना पड़ेगा स्कूल के लिए वही हालत होगी जो आपकी और मेरी आज मंडे को हुई है। याद करते हैं ना उठते हुए यार, वो सैटरडे संडे की अंगड़ाई, क्या बात थी उसमें। थिंकिंग वॉज कि यार ये तो हम हैं, हम तो एडल्ट्स हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट करना बच्चे कर पाएंगे इतना इतना लेसन लर्न, ये जो ज्ञान दिया है क्या दिल ये समझ पाएगा? होता है यार कि अब थोड़ा सा और वक्त बढ़ा लें, इस हॉलीडे का मी टाइम इन्जॉय कर लेते हैं, करते करते बहुत लेट हो जाते हैं, तभी हम अगले दिन इंपॉर्टेंट डे मंडेज स्कूल रीओपन डे पे लेट उठते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अपने बच्चों को स्लीप साइकिल जल्दी करवाओ, एक हफ्ता पड़ा है ठीक करवा लो, एंड टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पर मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड एक ऐसी शाम के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप यही कहोगे
2: मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा।
1: कहाँ लेकिन कहाँ जाना है आपको वो तो मैं बता देती हूँ। Book your calendar 29th of August. Zikr brings India's celebrated storyteller Amandeep Khayal to Dubai for the very first time with his show, जिसका नाम है धक धक। जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद एकदम हल्का सा टीजर भी अगर आप देख लोगे ना, आप हाँ यही कहोगे यार जाना तो है, पक्का जाना है। जाना कैसे है? बता देती हूँ। टिकट स्टार्ट्स एट 199 दिरहम्स, अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग। उसके साथ साथ डोर्स विल ओपन एट 4:30 PM। वेलकम होगा वार्म चाय के साथ एट जेम्स अलबर्शा नेशनल स्कूल। शो शुरू होगा 5:30 बजे। लेकिन अगर आपको इस शो की फ्री टिकट्स चाहिए, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट कीप इट लॉक्ड ओनली ऑन अ बिग 106.2।

0: जर्मनी ही पहुंच जाएंगे। चले जर्मनी?
1: एब्सोल्युटली।
0: ओके, सो आप और मैं वी आर रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन योर हेयर, या रनिंग थ्रू ग्रीन बवेरियन मेडोज विद विंड इन द हेयर। और जो डायलॉग सुनने को मिलता है वो ये वाला।
2: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: अब आपको बताना है, इससे मुश्किल सवाल जिंदगी में कभी नहीं किसी ने पूछा होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभी अभी पैन यूरोप टूर से वापस आए रिकी। इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर देन एल्प्स का चुल्लू भर बर्फ बताओ।
1: दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली करेक्ट। Like I said, beginner's luck, it is, not going to be so simple in the days to come, but Ricky, congratulations, your name goes into the draw and you're one step closer to winning that solo trip to Germany.
3: Energy and action, Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m., The Big Breakfast with Sid, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae।
4: इवनिंग रश शुरू हो चुका है E11 श्रेगजाद रोड पर। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ज्यादा ट्रैफिक। उसके साथ साथ अलकेल रोड पर मॉडरेट ट्रैफिक है एंड ऑल्सो E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड टूवर्ड्स शारजा आपको हैवी ट्रैफिक मिल सकता है, स्पेशली अराउंड मोहेजना एंड इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप कहीं और पर ट्रैफिक में फंसे हो, लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
3: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ae.
1: Song of the Hour was brought to you by InsuranceMarket.ae with 30,000 Google reviews with 4.8 star rating. Built in UAE, trusted across UAE.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
1: लेकिन कल वापस आऊंगी द बिग मिक्स 1 to 5 पर, छोड़ के जा रही हूँ आपको चटपटे गानों के साथ. And इसके बाद माय फेवरेट मसकली बस उड़ के जा रही है फिलहाल.
3: जरा पंख झटक गई, धूल अटक और लचक मचक.
1: कल मिलते हैं 105 till then. Keep listening to Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi. लोगों को बैठे बैठे प्यार होता है, बैठे बैठे लॉटरी लगती है. मुझे ऐवे ही बैठे बैठे कल दोपहर बुखार हो गया है. आई एम नॉट इवन सरप्राइज. मतलब जब आप इतने सुंदर हो तो नजर लगना इज वेरी नेचुरल. बट यहाँ पे आज मंडे ब्लूज को भगाने के लिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती. अगर काफी टाइम से सूटकेस धूल खा रहा है, पासपोर्ट वेट कर रहा है कि यार ठप्पा लगे, देन द टाइम इज हियर. द बिग चेक इन इज बैक एंड नाउ आई एम श्योर यू नो दैट वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी, अ प्लेस विद सम अमेजिंग प्रेटजल्स, हाई स्पीड हाईवेज, अ लॉट ऑफ लग्जरी कार्स. प्लस द बेस्ट पार्ट इज इट इज एन ऑल एक्सपेंसिस पे ट्रिप. टू रजिस्टर शॉर्टलिस्ट होने के लिए व्हाट्सएप करना है, वो भी एकदम फ्री है. बिग चेक इन अपना पूरा नाम राइट नाउ टू 0543091062. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: पन पन घटके। ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:05।
2: बॉलीवुड

अगर आपने गेस कर लिया, विच आई एम श्योर कर लिया होगा, कुमार सानूवाल का याग्निक की आवाज में, तो बस अब आपकी आवाज में ये गाना मुझे सुना दीजिए विद द कैरियोकी। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 या फिर आई कैन कॉल यू बैक व्हेन यू सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर। प्यार की उम्र में बार बार मुझे बुखार हो रहा है, तो थोड़ा प्यार आप दिखाओ ये गाना गा के। राइट है ऑन बिग 106.2 कीपिंग यू कंपनी, आई एम मानसी, दिस इज द बिग थ्रिल।

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: That was the ultimate vacation song. Vaise vacation is waiting for you here. We'll be all expenses paid. It's time for the big check-in. And I'm sure you know by now we're taking you to Germany. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने काफी बीमार पड़ रही हूँ. डॉक्टर ने कहा है कि हवा पानी बदलने की जरूरत है, तो आप जर्मनी जाके ही ठीक होंगे. फिलहाल अगर आप भी टीम बिग के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वी आर फन, वी आर सो मच फन टू ट्रैवल विद. All you need to do is check-in करना होगा. Check-in करने के लिए big check-in अपना नाम लिख के भेजना है right now to 054-309-1062.
2: Participate in the big check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Exclusively on Big 106.2.
1: And of course, our lovely travel partners, AFC Holidays. So, agar aap bhi hamare sath holiday pe jana chahte hain, farafat se send in those entries while you're at it.
0: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम है बट मंडे जैसी नहीं है क्योंकि पता है इट्स अ शॉर्ट वीक. वी गेटिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड. वी आर कैरियोकिंग हियर. गाना आना है. अगर आपको गाने का शौक है देन दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स एंड योर चांस टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट गाड़ी में बैठे बैठे. फिलहाल हिदायत, कैसा रहा आपका मंडे?
2: मंडे वाज बेस्ट बेटर
1: बेस्ट बेटर डिसाइड
2: बेस्ट
1: बिकॉज वी गेटिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड. क्या प्लान लॉन्ग वीकेंड कहीं जा रहे हो आप?
2: Plans, we are going to Umalkuin.
1: You're going to Umalkuin staycation?
2: Yeah.
1: Very vacation. Nice. Very, very nice. Where are you from, Hidayat? India mein kahan se ho aap?
2: India from Karnataka.
1: Nice. Yeah. I only know one line in Kannada that I learned for a guy that I had a crush on when I was in university. I don't know wo line achhi hai ke buri, but aap hi bata sakte ho. Nanige ninnu tumba ishta.
2: I like you so much.
1: अच्छा देखो, आई लाइक यू टू हो गया है. फिलहाल हिदायत, गाना वाना गाते हो कि नहीं गाते हो?
2: यस, बाथरूम सिंगर.
1: बाथरूम सिंगर, वेरी नाइस. आई हैव फीवर टुडे. बस इतनी कोशिश करना कि मुझे और दो पैनाडोल ना खानी पड़े. यस, योर ट्रैक हिदायत.
0: Karaoke.
1: हां जी.
2: किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन तेरी साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी. मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला.
1: ओए होए होए, जरा तस्वीर से तू
2: निकल के सामने आ मेरी महबूबा. मेरी महबूबा,
1: ओए होए,
2: मेरी महबूबा.
1: यू सिंग रियली वेल हिदायत, यू वेरी वेल. मतलब बहुत लड़कियों के लिए आपने गाना गाया है. तस्वीर से निकलकर सामने आ, एक के लिए गाया है?
2: एक
1: के दो.
2: स्कूल लाइफ में एक, कॉलेज लाइफ में एक, बस अभी मेरा वाइफ के लिए.
1: अच्छा, तो तीन के लिए टोटल गा दिया. स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एक, वाइफ के लिए एक. बट यू सैंग रियली रियली वेल. इट वाज लवली. अतोमल क्वीन में गाओगे ये गाना स्टेकेशन पे?
2: वेकेशन पे हम लोग बैचलर पार्टी करेंगे.
1: अच्छा, बीवी को लेकर ही नहीं जा रहे हो?
2: नहीं नहीं.
1: वाओ,
2: बीवी
1: छुट्टी पे है. वेरी नाइस. ऐसा कुछ मत करना कि वो आके आपकी छुट्टी करे. एंजॉय योर स्टेकेशन एंड यू सैंग ब्यूटीफुली. थैंक यू हिदायत. This is what we do every single evening while you're heading home. We sing, we entertain, mahol banate hain. Gaana aaya na aaya, agar gaane ka dil hai to call karo 800-1062 par.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: हाँ जी, रोमांटिक गाने के साथ साथ रोमांटिक डेस्टिनेशन पे आपको ले जाने वाले हैं। आई थिंक यूरोप के मौसम में कुछ है, दैट एवरीथिंग सीम्स रोमांटिक। वी टेकिंग यू टू जर्मनी दिस ईयर। इट्स टाइम टू चेक इन विद द बिग चेक इन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, डू इट फटाफट। बिग चेक इन अपना नाम लिख के भेजना है 0543091062। शाम आज आप हो सकते हैं शॉर्टलिस्ट। ऑल्सो द लॉन्ग वीकेंड इज हियर एंड आई हैव गॉट द परफेक्ट प्लान फॉर यू। इफ यू लव स्टोरीज, इफ यू लव पोएट्री, देन अमनदीप खयाल इज कमिंग टू दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई गॉट इनवाइट्स टू गिव यू। सारी डिटेल्स देती हूँ। साथ में हम खेलेंगे द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर। पता है इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये उतना ही टफ है जितना इंतजार है मंडे से लेकर थर्सडे का, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है ना इस बार।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, मंडे की शाम है. वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल एंड बॉस से कम नहीं है कुछ लोग. अभी भी मुदस्सर का मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया है, देख के नहीं लग रहा है आपको कि आपको बुखार है. अब मैं उन एम्प्लॉयज में से नहीं हूँ ना जो मतलब बिना मेकअप के ऑफिस आ जाएं. मुझे अच्छा लगता है तैयार होकर रहना, बट आई थिंक अगली बार से मैं ये ट्राई करूंगी. अगर आप नहीं मान रहे हो तो बॉस कैसे मानेंगे कि मुझे बुखार है. पर मुझे सच्ची में है. फमीदा, जब आप बीमार होते हो तो क्या आप ऑफिस में बिना तैयार हुए जाते हो?
2: नहीं,
1: तैयार होकर जाते हो ना, लाइक
2: बट वी शुड गो एज इट इज. इट्स ओके, दैट्स द डेडिकेशन.
1: फिलहाल फमीदा, आप भी लिपस्टिक लगा के जाते हो जब ग्रोसरी लेने जाते हो?
2: आई
1: थिंक दैट्स दुबई. दैट्स दुबई. एंड वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस प्लेस, कि आप जहां भी जाओ लोग एकदम टिप टॉप रहते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वाइब. फमीदा, व्हाट डू यू डू?
2: आई एम अ टीचर.
1: यू आर अ टीचर? ओ माय गॉड, बैक टू स्कूल नाउ फ्रॉम मंडे?
2: या ऑलरेडी एक्चुअली. बच्चे आते हैं मंडे से, हम चले जाते हैं पहले.
1: वेरी नाइस. यू मस्ट बी वन ऑफ दोस फेवरेट टीचर्स. मैम, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, कितनी अच्छी लिपस्टिक है. आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोस टीचर्स जो सुबह सुबह तैयार होकर आती थी.
2: दे लुक अप टू मी फॉर एवरी डे, लाइक व्हाट कलर आई वेयर.
1: हाउ स्वीट. मिस चांदनी फ्रॉम मैं हूं ना. फिलहाल फमीदा, व्हाट प्लान्स फॉर द लॉन्ग वीकेंड?
2: लॉन्ग वीकेंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग माय किड्स बिकॉज दे आर गोइंग बैक टू स्कूल. तो लॉट ऑफ वर्क एज अ मामा. बट बच्चों को उठाना इज समथिंग इज अ टास्क.
1: आर यू लाइक जेंटल व्हेन यू वेक देम अप और यू आर लाइक आवर मदर्स?
2: एक्चुअली दैट्स नॉट व्हाट आई डू. दैट माय हस्बैंड्स पार्ट.
1: तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द वेरी बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: नेम 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर ए.
2: अंगद.
1: अंगद कौन है?
2: एक सीरियल ये था.
1: ये देखो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. शी इज सेइंग अंगद एक सीरियल में था. थ्री थिंग्स दैट मेक यू लूज योर पेशेंस. जब बच्चे ऐसा कुछ स्कूल में करते हैं, यू लूज योर काम एंड यू नॉट द स्वीट टीचर.
2: टॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग.
1: हाल बच्चों का वही है जो हमारा था. टॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग. जितनी नींद स्कूल में आती है ना, उतनी अच्छी नींद कभी भी घर पे नहीं आई है. दैट इज अ फैक्ट. थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन एंड कलर एंड यू कैन ईट.
2: Green apple.
1: Okay.
2: And grape.
1: Nice. 3 things that you hate doing in the morning. Waking up.
2: Taking a bath. And combing my, drying my hair. And ear cleaning.
1: Ear cleaning?
2: हाँ, अभी
1: ऑफकोर्स करना पड़ता है टीचर्स को, बिकॉज उन्हें देखना होता है ना कि कौन खुशफुस आ रहा है क्लास में. 3 things about your husband you'd like to change.
2: Gymming habits, sleeping habits,
1: very nice.
2: And
1: time is finished.
2: Spending time in the washroom.
1: Very good. Too much gymming?
2: Yeah, too much gymming.
1: Too much gymming.
2: Thoda stop.
1: And is it after the gymming he's spending too much time in the washroom?
2: No. Okay, this okay, is S-A-M-A-G-Y.
1: Farmida, not bad for the first time. आपने अच्छा खेला. कुछ answers hit थे, कुछ miss थे, but most of your answers were within 5 seconds. I hope you had fun.
2: थैंक यू मानसी.
1: बाय. यही है 5 सेकंड रूल. खेलने का एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.
0: बिग. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Make the school run easier in a brand new Ford. Whether in a spacious Explorer, capable Everest, refined Taurus, or versatile Territory, you'll enjoy comfort, confidence, and smart technology every day. For a limited time, get your down payment covered. Enjoy 5 years or 100,000 kilometer service and warranty. 5 years Ford app access and pay nothing until 2027. Ready, set, Ford. Visit your nearest Altair Motors or Premier Motors showroom today. Shop online or call 800-MOTORS. Conditions apply.
5: Insurers Market. .ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800-ALFRED 24/7. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae.
3: Experience an unforgettable evening as Gagan Mudgal brings you Jadu, the life of Javed Akhtar. Step into the world of Indian cinema's greatest master of words for one special night in Dubai. August 28th, 8:15 p.m. at The Junction. Don't wait. Get your tickets now on District. Powered by Big 106.2.
6: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
7: Congratulations, sabse pehle.
8: Thank you so much. I'm so excited for this.
7: शेर ने खून चख लिया है, so अब रिकी को कोई नहीं रोक सकता है. जर्मनी, आप और मैं साथ मिलकर ना मन में तो जर्मनी ही पहुंच जाएंगे. चले जर्मनी?
8: Absolutely.
7: Okay. So, आप और मैं, we are running through green Bavarian meadows with the wind in your hair. Yeah? Running through green Bavarian meadows with the wind in the hair. और जो डायलॉग सुनने को मिलता है वो ये वाला.
9: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.
7: अब आपको बताना है, इससे मुश्किल सवाल जिंदगी में कभी नहीं किसी ने पूछा होगा. What is the correct answer? अभी अभी पैन यूरोप टूर से वापस आए रिकी. इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, देन एल्प्स का चुल्लू भर बर्फ बताओ.
8: दिल वाले दुल्हने ले जाएंगे.
7: एब्सोल्युटली करेक्ट. Like I said, beginner's luck. It is, not going to be so simple in the days to come. But Ricky, congratulations. Your name goes into the draw and you're one step closer to winning that solo trip to Germany.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
1: 36 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 34. ह्यूमिडिटी फिलहाल 68% पर.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. बिग
12: फायर है तू.
13: वाइल्ड फायर है.
14: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज. अपने दम पे बनाए मैं. नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है.
0: Point two.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वैसे अगर लाइफ में आप काफी इंटरेस्टेड हैं इन कार्स, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दैट मूव्स, देन यू हैव टू चेक आउट ऑटो ड्राइव. इट्स नॉट ऑटो, इट इज ओटीओ ड्राइव. दिस इज योर गुरु प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग इन मोबिलिटी, इनोवेशन एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्ट. फ्रॉम इलेक्ट्रिक कार्स टू एआई पावर्ड टैक्सीज एंड द लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स, ऑटो ड्राइव brings the world of Wheel Street to you. And every week, their news segment Auto Pulse aapko hottest headlines deta hai from Dubai to Detroit, all in under 2 minutes. So keep your ears tuned, your engines running. It's time for Auto Pulse, powered by Auto Drive. Definitely check them out. Their website is autodrive.com, that is OTO-drive.com.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi, and the long weekend is here. Mera plan set hai. I am not missing this. I'm a huge fan of poetry and I love Amandeep Khayal. In fact, if you don't know, Tamasha dekhne ke baad, unhone apna full-time job chhod diya tha and he started telling these stories, he started hosting these shows. He's fantastic. And if you've not made any plans, I think ye best plan hai. Book your tickets now. Tickets aapko milengi district par exclusively. Zikra aapke liye lekar aaye hain India ke celebrated storyteller Amandeep Khayal. Tickets start at 199 dirhams. And like I said, district pe aapko tickets milenge. Tickets include high tea and free parking. Yahan bhi har sham tickets jeetne ka mauka aapke paas. Nitesh, kaisa raha Monday?
2: As usual, the hectic, but the good part is the traffic is slow.
1: Where is the traffic slow? It's almost 1 hour ka delay on Sheikh Zayed. Sheikh Mohammed bin Zayed, bumper to bumper traffic hai. Aap kahan hai jahan traffic nahi hai?
2: The good part is I am driving on Alkhel Road against the traffic.
1: Oh, lucky you. What plans for the long weekend?
2: Now I am hoping that you might make some plan for me.
1: You love poetry. Do you like Sher o Shairi?
2: I do.
1: तो आपको प्यार हुआ है कि प्यार में दिल टूटा है? क्योंकि दो ही लोग हैं जो मोहब्बत होती है वो सुनते हैं पोएट्री, और जब दिल टूट जाता है तो फिर पोएट्री से अच्छा फ्रेंड कोई होता ही नहीं है।
2: दोनों हुआ है।
1: आई हाय, अभी किस फेज में हो, मोहब्बत वाले के ब्रेकअप वाले?
2: शादी के बाद मोहब्बत वाला।
1: शादी के बाद मोहब्बत वाला तो बहुत रिस्की फेज है, मतलब
2: बीवी के साथ?
1: अच्छा हाँ, तो क्लैरिफाई करो ना नितेश, इतने एकदम सस्पेंस वाले तरीके से नितेश ने कहा शादी के बाद मोहब्बत वाले, क्योंकि आप नहीं होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार शादी के बाद मिलता है। फिलहाल अमनदीप खयाल को सुना है आपने पहले?
2: ऑन द रील्स।
1: हाँ, मैंने भी उनको रील्स पे देखा है। फर्स्ट टाइम आई विल आल्सो विटनेस दिस शो, ही इज फैंटास्टिक। आई प्लेड यू अ गाना हियर, यू हैड टू गेस द वॉइस बिहाइंड दिस रोमांटिक गाना।
3: मुझे रात दिन,
1: व्हाट इज द राइट आंसर?
2: दिस वीक आई थिंक ओनली वन सिंगर कैन सिंग इट।
1: It is Sonu Nigam. Congratulations, Nitesh. Couple tickets. आप अपनी मोहब्बत के साथ आइए और एक शाम enjoy कीजिए अमनदीप खयाल के साथ। शो का नाम है धक धक, तो धड़कने बढ़ेंगी, मजा आएगा, मैं भी आपको वहां मिलूंगी। सो प्लान सेट है, we'll see each other on the 29th.
2: Thank you very much. Have a lovely evening.
1: You too, bye.
0: Big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल मानसी. एंड जब से लाइसेंस आया ना, बस तब से सोचा है कि गाड़ी खरीदूंगी तो एसयूवी खरीदूंगी. एंड अब तो मेरी ड्रीम एसयूवी में अनबीटेबल ऑफर्स भी मिल रहे हैं. यू कैन ऑल्सो ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जेटॉस अनबीटेबल ऑफर्स. वेयर ऑन देम और 0% इंटरेस्ट. फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड है. 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी है. EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 966 dirhams अ मंथ, 966 dirhams. विजिट जेटॉर शोरूम्स अक्रॉस अबू धाबी, दुबई, अजमान या फिर अलेन. आज ही जेटॉर UAE पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप होल्डिंग. TNCs do apply. फिलहाल आपकी ब्रांड न्यू जेटॉर में जब ये गाना प्ले होगा, ओए होए होए, माहौल बन जाएगा.

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
6: Congratulations, Monday vibe totally. 42-minute delay. अभी भी शेखजाद पर इट इज वेरी वेरी स्लो मूविंग। दिस हैवी ट्रैफिक वर्का से मर्डिफ, मर्डिफ से मोहिसना, 1 घंटा 4 मिनट का डिले दिखा रहा है। नादल हमर, राशिदिया, उम्र मूल, फेस्टिवल सिटी, गरूद, इट इज ऑल पैक्ड। फिलहाल 16 to 20 मिनट डिले इफ यू आर ऑन द दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट इन जद्दाफ इज वेल दिस ट्रैफिक। इसके अलावा पैची ट्रैफिक आपको मिलने वाला है अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स मोटर सिटी, स्पोर्ट सिटी, टेकिंग द हेस स्ट्रीट। इसके अलावा कुछ नोटिस किया है मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2.

0: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: घर से तो निकले थे ये सोच के कि हाय फिर से मंडे. इमेजिन मंडे मेमोरेबल बन जाए व्हेन यू गेट अ कॉल एंड आई टेल यू कि आप हो गए शॉर्टलिस्ट फॉर द अमेजिंग बिग चेक इन टू जर्मनी. दिस टाइम वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. इट्स बिगर एंड बेटर देन बिफोर. इफ हाई स्पीड हाइवेज, लग्जरी कार्स एंड ऑफ कोर्स सम यम चॉकलेट केक इज योर वाइब, देन यू हैव टू रजिस्टर राइट नाउ. द लास्ट 5 मिनट्स फॉर यू टू रजिस्टर. सिर्फ व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062. Get ready to pack your bags. We're taking you to Germany. The presenting sponsor is Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsor Ford and Sharaf DG. Our travel partners AFC Holidays. So get set messaging. It's time to check in.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Bollywood.
1: 1 + 1 = 3.
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from?
1: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
3: School's starting soon and we need a car.
4: Books, uniforms, everything.
3: Don't worry, I found the best back-to-school offer on Self-Drive. Self-Drive cars from just 1099 dirhams per month, flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem, zero penalty on early returns. Get ready for the new school year with Self-Drive from 1099 dirhams per month, flat rate. Self-Drive, get ready, get driving.
2: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
6: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: The big mix miss kiya gaya.
7: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
8: हाय प्रणव, कितने बड़े फूडी हो, कितना रेट करोगे खुद को 1 to 10 में?
9: 11.
8: ओके, आई लाइक द कॉन्फिडेंस. ओके, वी गोना स्टार्ट विद द गेम. आई एम गोना गिव यू 2 चॉइसेस और आपको बताना है कि आप इन कौन सी डिश चूज करोगे. ठीक है?
9: डन.
8: ओके, समोसा या वड़ा पाव?
9: समोसा.
8: ओके, समोसा या डोसा?
9: समोसा.
8: समोसा या राजमा चावल?
9: आई थिंक राजमा चावल.
8: ओके, राजमा चावल या पास्ता?
9: राजमा चावल.
8: राजमा चावल या भल्ला पापड़ी चाट?
9: आई थिंक भल्ला पापड़ी चाट.
8: ओह, देखा, बदल गए ना राजमा चावल, बदल गए. आई सी देयर अ लॉट ऑफ पीपल जो समोसा फैन है, आई एम वन ऑफ देम. आई विल नॉट रेट यू एज अ फूडी, इट्स ओके, यू आर एक्चुअली 11 ऑन 10. थैंक यू, बाय. इफ यू थिंक यू आर अ बिगर फूडी देन प्रणव, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड वी विल सी इफ यू आर a bigger food.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: पैची ट्रैफिक एट द मोमेंट. अगर आप वर्का से जा रहे हैं मर्डिफ आगे, मुहेस नाशिक मोहम्मद बिन जायद, 35-40 मिनट डिले डिपेंडिंग आप कहाँ पे हैं. हैवी ट्रैफिक नियर राशिदिया, दुबई फेस्टिवल सिटी, नादल हमर. ट्रैफिक आल्सो पैची एट द मोमेंट नियर जिद्दाफ इन दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट. शेख जायद से फिलहाल 37 मिनट डिले दिखा रहा है. इसके अलावा थोड़ा बहुत ही सही आपको ट्रैफिक मिलने वाला नियर अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया एंड इफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स JVT. Anything else, anything unusual, please report 800-1062 par.
0: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
7: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
11: नहीं, ये तो मुफ्त है.
7: गुड, चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये प्ले हो रहा है, याद आई मूवी?
1: याद आई।
0: कौन सी मूवी थी?
1: मोहब्बतें।
0: Absolutely correct, and इसी के साथ congratulations. प्रियंका विद सी के होती हैं shortlist for the big check into Germany. देखो अगर ये जर्मनी की ट्रिप जीत गई ना तो मैं भी जाऊंगी उनके पास जिन्होंने सी के करवाया, मैं भी एबीसीडी ऐड करवाती हूँ। मैं भी एबीसीडी नहीं, पहले जीत जाने दो, अभी तो शॉर्टलिस्ट हुई हो, अगर जीत जाती हो तो 100% मैं भी सी के एबीसीडी सब लिखवा लूंगी।
1: We'd love
0: to travel with a celebrity. मजा आ जाएगा भाई, मिस यूएई के साथ हम ट्रैवल करेंगे। सो फिलहाल योर नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।
1: Thank you so much, Mansi. Bye.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: शाम ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल 106.2 द बी

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: रास्ता ये है कि कीप सिपिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। इट इज 36 डिग्रीज, लो है, आज जाएगा अराउंड 34, बट स्टिल फील्स लाइक 47 आउटसाइड, वेरी ह्यूमिड टुडे, ह्यूमिडिटी फिलहाल 68% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: मंडे है, ऑलमोस्ट दी एंड हो गया मंडे का. लॉन्ग वीकेंड आने वाला है. लाइक आई सेड, लीव योर प्लान्स ऑन मी. आई एम गोना फिक्स एन अमेजिंग अमेजिंग इवनिंग फॉर यू दिस फ्राइडे. इफ यू लव ग्रेट सिनेमा, आइकॉनिक लिरिक्स, देन आई हैव गॉट यू कवर्ड. यस, 28th अगस्त को गगन मुदगल लेकर आ रहे हैं जंक्शन दुबई में जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर, जावेद साहब. एंड इट इज गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल नाइट. मतलब गगन सर की आवाज में तो जादू है ही, एंड अब वो जावेद साहब की बातें करेंगे तो और मजा आने वाला है. द शो स्टार्ट्स एट 8:15 PM, सो गेट योर टिकट्स राइट नाउ बिफोर दे आर सोल्ड आउट. दे आर अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट. इनफैक्ट राइट हियर आई एम गिविंग यू अ चांस टू विन कपल इनवाइट्स इफ यू आर अ फैन ऑफ जावेद साहब, व्हिच आई एम श्योर यू आर. ही इज गिवन अस सम इनक्रेडिबल सॉन्ग्स, इनक्रेडिबल मूवीज, बट दिस हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स. इनफैक्ट इतने खूबसूरत लिरिक्स हैं दैट वी ऑल इयर्स लेटर ऑल्सो रेजोनेट विद द सॉन्ग. एंड इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, Mansi. Yeah, Big Thrill. And of course, we are making plans for the long weekend. Something very, very magical is happening on Friday, 28th August ko at the Junction. Gagan Mudgal aapke liye lekar aaye hain. जादू द लाइफ ऑफ जावेद अख्तर, जावेद साहब जिन्होंने हमें कमाल सिनेमा एंड ग्रेट लिरिक्स दिए हैं. तो इट इज़ गोना बी एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल नाइट. आप अपने टिकट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से बिफोर दे आर सोल्ड आउट. एवरी सिंगल इवनिंग आई ऑल्सो गिव यू अ चांस टू विन टिकट्स हियर. फिलहाल विक्की, कैसा रहा मंडे?
2: ऑल द बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा था.
1: ऑल द बेस्ट बोल दिया इन्होंने, मतलब हो गया है मंडे. समझ में आ रहा है क्या? आप मंडे में हो. ऑल द बेस्ट. चलो कोई बात नहीं,
2: मॉर्निंग से फुल बिजी
1: हो गया ना, तो छोटा हफ्ता है ये, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है.
2: राइट.
1: विकी, आप मुझे एक बात बताओ, आप जावेद साहब के फैन हैं? सिनेमा देखी है उनकी? शोले तो सबने देखी है, बट डू यू लाइक हिज लिरिक्स?
2: लिरिक्स सॉन्ग्स, बहुत सॉन्ग्स है जो थोड़े सुनते ही पूरे फिर उसके बाद हम गाने लग जाते हैं.
1: हाँ, क्योंकि जावेद साहब की कलम में कमाल ही ऐसा है, मैजिक ही ऐसा है.
2: राइट.
1: तो ये जो गाना मैंने आपको सुनाया था, ये गाना था कौन सा जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था?
2: कल हो ना हो.
1: बिल्कुल सही जवाब. इसी के साथ आपको मिल रहे हैं 2 टिकट्स टू गो एंड विटनेस जादू.
2: Thank you.
1: The life of Javed Akhtar. This is happening at the Junction. Gagan Mudgal, of course, naam suna hoga. Bahut kamal awaaz hai. Toh unhi ki awaaz mein aap Javed sahab ki kahani sunenge, toh bahut maza aayega.
2: Thank you.
1: Thank you, Vicky. Aaram se gaadi chalaiye. Monday hai, thoda man lagaiye. Bye.
2: Right. Thank you.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ आई फिल्म मीनार से गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो. यस, द काउंट डाउन हैज बिगन. बड़ा इंतजार होता है लंबा सा ना, मंडे से लेकर उस आखिरी वर्किंग डे का, व्हेन यू आर हेडिंग इनटू अ लॉन्ग वीकेंड. बट सम इनक्रेडिबल इवेंट्स हैपनिंग एंड वी गिविंग अवे टिकट्स हियर. इसी के साथ याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक नहीं पता है तो जर्मनी ले जाने वाले हैं आपको. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन एंड दिस टाइम द डेस्टिनेशन इज स्टनिंग. अगर आपने डॉन देखी है, डॉन 2, I'm sure तब से आपकी भी बकेट लिस्ट में होगा कि यार एक बार तो जाना है, म्यूनिक जाना है, जाना है. देन वी आर टेकिंग यू देयर. ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप है. रजिस्टर करने के लिए सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है, 0543091062 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. बिग चेक इन अपना नाम लिख के भेजना है. दैट्स सिट एवरी सिंगल डे थ्रू आउट द डे. इन फैक्ट विल गिव यू अ चांस शॉर्ट लिस्ट होने का. ऑल्सो आपके पास मौका है इंस्टाग्राम के थ्रू शॉर्ट लिस्ट होने का. सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस इफ यू नॉट फॉलोइंग अस ऑलरेडी. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से Hi to me, I'm Mansi Talking. I will talk to you tomorrow. Have a great evening. Bye.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: Hi, Zameer. Good evening.
3: Hi, ma'am. How are you?
2: I am good. How are you?
3: Good evening. Very good evening. Just missing my wife.
2: Missing your wife?
3: Yes.
2: कहाँ गई
3: हो? Too much.
2: अरे अरे अरे मोहब्बत हो तो ऐसी ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
3: अरे सच्ची में आ रही है, एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है।
2: ओए होए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
3: तो शादी को तो 5 साल हो गए।
2: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार ये तो अलग ही आश की अलग ही मोहब्बत है। लव मैरिज थी?
3: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई।
2: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार। 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
3: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं।
2: अच्छा, आपने
3: लॉन्ग
2: डिस्टेंस मैरिज है आपकी? हाय, दैट्स रियली सैड। बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ।
3: यस, आई एम ट्राइंग टू।
2: हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कितने फोन लगाते हो दिन में, कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया
3: करते? करता ही रहता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं करता।
2: वो उठाती नहीं उठाती
3: नहीं, वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको।
2: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर, 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
3: जाएगी। साथ यही हो रहा है।
2: नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी। मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो। जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Some nights need no words. Just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।